ठाकुर का पयो जिसका सब आधारो, जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो। एह वास्तत दीन जाए नित नित रख उर धारो, तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो।

सगल गुणा के दाते स्वामी बिना सुनो एक दीना देह दर्श नानक बलिहारी जियड़ा बल बालकीना तेरे कवन कवन गुण।

दास महाराज जो गुरु नानक महाराज आप नारायण कला धर जग मह परवरयो जीवां दे कल्याण लई जिमे गुरु नानक महाराज आए अगे गुरु अंगद देव गुरु अमरदास जी होए ओवें ही उन्हां दे घर दे सेवक दास धन गुरु

आखदे हजारां दी गिणती विच संगत जी, जिवें सचखंड श्री हरिमंदर साहिब अजोके समय दे अंदर किन्ना संगतां दा इकट्ठ रहिंदा है, पुरातन समय दे अंदर भी श्री गोविंदवाल साहिब दी धरती ते धन गुरु रामदास महाराज जिया दे चरण परसन लई हजारां ही संगतां आउंदियां ने।

0: भी पिता दे विछोड़े विच बैठे ने संगत जी, हजे भी मन तो ओ दुख उतरिया नहीं पातशाह दे जान दा। जिवें बालक संगत जी मोह दे अंदर बैराग कर दे, एदा हर वेले ही बाबा मोहरी जिया दे अखां विचों जल चलदा रहिंदा। पातशाह नूं याद कर करके जदो धन गुरु रामदास महाराज जिया ने दोनों ताई वेखिया है।
1: पर संबंधन की लख चाली
0: महाराज जिया ने होर भी साक संबंधी वेखे जेड़े धन गुरु

आप संगता ने रबी बाणी धुर की बाणी अकाली बाणी दे पिछले कुछ समय तो कीर्तन हर जस सरवण कीते हन। अज दास छुट्टियां तो उपरंत सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कृपा कीती है। साध संगत जी आपा फेर मुड़ के सच्चे पातशाह जिया दी पावन बाणी दे पाठ बोध नूं सुनन करन वास्ते गुरु के हजूर एकत्र होए हां। आओ श्रद्धा प्रेम भावना सत्कार अदब सहित सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जिया दी बाणी पढ़िए सुनिए अते विचारिए। साध संगत जी हुण तक आपा 384 अंग तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया दी पावन बाणी दे पाठ बोध सरवण कीते हन। 384 अंग दे उपरों ही पाठ अज प्रारंभ होणगे। सो साध संगत जी सचे पातशाह दीन दुनिया दे रहबर चवर छत्र तख्त दे मालक धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अपार कृपा

तन सोहया एथो साध संगत जी पावन बाणी घर सतवा जिथे आरंभ हुंदा है सचे पातशाह धन सत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कृपा कर रहे हैं।

इंज कह लो 90% रस खो गया। ते जे ओ हुण आखे क्योंकि तुसी बड़े टिकाओ नाल पै सुनदे, हुण मैं थानू चौथी दफा सुनाना, रस बिल्कुल खो गया। ते जे किधरे उसने कह दिता हुण मैं थानू पंजवीं दफा सुनाना, सारिया ने कहना दीवारां नू सुना सी चले, पागल लगता किधरे अद हो गई। पहले महाकवि, महाकवि तो हुण पागल। महाकवि सी, कविता नवी प्रतीत हो गई, पांच दफा सुनन नाल बिल्कुल पुरानी हो गई, बिल्कुल पुरानी, सब कुछ खो गया। संसार विच ऐसा कुछ भी नहीं जो पुराना ना हो, किधरे भी मन नहीं टिकता, किधरे भी नहीं टिकता, जो नहीं मिलिया नवा है मिलदे ही पुराना हो जाता है, जो नहीं वेखिया नवा है वेखदे ही पुराना हो जाता है, जो नहीं सुनिया नवा है सुनदे ही पुराना हो। मन नू नित नवा चाहिदा है। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने इक है कदी पुराना नहीं आउंदा, साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दा। भगत कहिंदे ने एक दिन दी गल नहीं, एक सैकंड पहले जो रस आया है दूजे सैकंड विच ओ रस हो रहा है, तीजे सैकंड विच रस हो रहा है, और वो रस वधदा ही जा रहा है, वधदा ही जा रहा है, वधदा ही जा रहा है। वो साहिब नित नवा है, नित नवा है। किसी भी कविता नू संगीत दी धुन नू पहले सुनदियां जो रस होवेगा, बार बार सुनन नाल रस को जाएगा, पर बार बार जपदिया ही रस वधदा जा रहा है, वधदा जा रहा है। क्यों? वो साहिब नित नवा है, साहिब मेरा नीत नवा, क्योंकि साहिब पदार्थ नहीं है परमात्मा है, नित नवा है सत परमेश्वर नित नवा। जो पुराना हो जाता इसका ते बोध है थोड़ा बहुत, कुछ चोटी दे महान शायरा ने खुदकशी भी कर ली, जैसे नंद लाल नूरपुरी ने, 3 साल पहले प्यारा सिंह रोशन ने। मैनू कईयां ने आके गिला किया क्योंकि 10-15 साल तो मेरे नाल चलता सी, अमृतसर का वासी, बड़ा वड्डा चित्रकार, बड़ा महान कवि, कवि दरबारां दी रौनक सारे समझदे सन, दरबार साहब दे नेड़े रहिंदा सी। जिस दिन मैं अमृतसर पहुंचदा सी, क्योंकि दास धन गुरु रामदास जी दे पुरब तो लैके दिवाली तक उत्थे हाजरी भरदा है, बस पहले खड़ा यह मिलदा सी मैनू, गल नाल मैनू पहले यह लांदा सी। लेकिन 3 साल पुरानी गल मैं करा, जब मैं पहुंचया मैं कह हद हो गई, प्यारा सिंह जी रोशन ये नहीं दिखाई देते, बाकी तो मिले। दूजे दिन भी जद मिलना ना होया, क्योंकि दूजे दिन कवि दरबार सी, शायद आपनू पता होवे धन गुरु रामदास जी महाराज दे पुरब ते बहुत वड्डा राग दरबार हुंदा है, जिस राग दे शब्द दा उचारण है गुरु रामदास जी दा उसे राग दे गाना हुंदा है, 30-35 जत्थे पहुंचदे ने, बड़ी संगत आउंदी है दूर दूर तो शहरां तो, पर दूजे दिन कवि दरबार आउंदा है, 30-35 कवि भी पहुंचदे ने चोटी दे। मैं देख के दंग रह गया, उन्हां कवियां च रोशन कोई नहीं सी, निर्वैर एक कवि दिल्ली दा। मैं उन्हूं पुछ ले, मैं थोड़ा मित्र कित्थे है, कहने मित्र ते थोड़ा सी थानू नहीं पता, उन्हें अपने मकान की चौथी मंजिल तो गिर के खुदकशी की थी, शरीर दे टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं कहा ऐसा करेगा, मैं कहा कुछ दिन तो मैनू कहिंदा सी जिंदगी की रिपीटेशन है, कुछ भी नहीं पुनरुक्ति है, जिवें बार बार श्वास ले रहे हैं, बार बार खाई जाओ, सवेरे खा लो, शामी

0: बार बार पी जाओ, बार बार सोना है, बार बार ओही गल्ला। मैनू कहिंदा सी मस्किन जी मैं उकता गया, ये पुनरुक्ति हुण मैनू नहीं चंगी लगती, ये रिपीटेशन हुण मैनू नहीं चंगी लगती, मैं कित्थे तक रिपीट करा। सवेरे खा लवां, शामे फिर खा लवां, सो जावां, फिर जाग पावां, फिर सो जावां, इत्थे उही कुछ कर रहे हैं, उही कुछ कर रहे हैं। गालबन 60 साल का सी, छोटी उम्र भी नहीं सी, पर लगता सटदा नहीं सी, जे लगता सी जिवें 40 दा होवे। सेहत अच्छी सी, तगड़ा सी। कहिंदा सी मैं इस रिपीटेशन विच नहीं जीवना, इस पुनरुक्ति विच नहीं जीवना। मैं कि ठीक, कवि जड़े होंदे ने, शायर लोग होंदे ने, आखिर बेचैन ते होंदे ने, क्योंकि बहुत गहराई नाल देखदे ने हर चीज नूं, और हर चीज जद बेमैनी हो जाती है उदास हो जाते हैं। मैं कि शायरां दा सुभाव होंदा है, कवियां दा सुभाव होंदा है। मैं कभी सुपने च भी सोच नहीं सकता सी कि उन्हें खुदकशी कर दे। कभी इस तरीके नाल आंकड़े इकट्ठे करोगे, दुनिया के बड़े बड़े चिंतक, दार्शनिक, फिलोसफर, कवि कम से कम 10% ने खुदकशी की, आत्महत्या की। हैरानगी आती है, ऐसा क्यों? कहिंदे ने बार बार ओही कुछ मन इत्थे नहीं टिकदा, नहीं टिकदा। रायपुर कवि दरबार सी ते मैं कहा चलो रोशन जी, कहण लगे हुण कवि दरबारां च वी जाण नूं मन नहीं करदा। ओही संगत, ओही कवितावां, ओही माहौल, ओही लोकां दी वाहवा, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਕੁਛ, ਉਹੀ ਕੁਛ, ਨਵੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਕਸ਼ੀ। ਹਕੀਮ ਮੋਮਨ ਖਾਨ, ਮੋਮਨ बहादुर शाह दे दरबारी शायरां दे चो एक नामवर चोटी दा शायर। एक मरने पे ही हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। कहिंदा है मेरी मायूसी देखो, आपां ते फैसला करी बैठे हां खुदकशी करनी है। एक मरने पे ही हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। पर बाद विच संभाल लै, हकीम सी, सियाणा सी, बुजुर्ग सी। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, पर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। कहिंदा फिर किथे जावांगा। हकीम मोमन खान, मोमन उस वक्त इस्लामी जगत दा चोटी दा कुरान शरीफ दा वक्त, बड़ा बुलंद पाया शायर, और जिन्हों बहादुर शाह जफर वक्त दा ए बादशाह हिंदुस्तान दा उस्ताद जी करके बुलंदा सी, हजरत करके बुलंदा सी, झुक के सलाम करदा सी उस, भाई बुजुर्ग है, सियाणा है, उस्ताद। कहिंदे अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। कहिंदे मन किधरे भी नहीं टिकदा, किधरे भी नहीं टिकदा। समा हो गया स्वामी रामानंदा बोल, कहिंदे ने कत जाइए रे, मन किथे जाए, कर लागो रंग, रंग लग गया। मेरा चितना चलत मन भयो पंग, मन पिंगला हो गया, मन दे पैर ही टूट गए, गल खत्म। भूतकाल दियां यादां खत्म, भविष्य दी चिंता खत्म, पैर ही टूट गए। मेरा चेतना चलत मन भयो पंग, एक दिवस मन भई उमंग, घस चंदा चंदन छोआ बहुत सुगंध, पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बताए वो गुरु मन ही माए। जिस ब्रह्म नो लोकी तीर्थां ते लभदे न, मंदरां च लभदे न, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च लभदे न, कहिंदे मैं अपने अंदर लभ लिया। यही गुरु अमरदास जी कहिंदे ने, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। मंदिर गया होया उसे दा सफल जिसने जीवन नो हरि मंदिर बना लिया। मस्जिद दिच गया होया उसे दा सफल जिदी जिंदगी ही खाना खुदा बन गई। वो गुरुद्वारे गया होया उसे दा सफल जिसने अपने आप नु गुरु दा रूप बना लिया। ते गुरु मान नाल कह देवे मेरा अपना ही रूप है। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। कत जाइए रे गल रागो रंग। गालिब इसनो इंज बयान करदा है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राजे हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहिंदा टूटे पैरां दा बड़ा एहसान है, अपां टिक गए भटकना मिट गए। गल समझ च आ गई है पर मैं हुण समझा नहीं सकदा, समझा नहीं सकदा। दुनिया दे सारे संत भगतां ने कह दिता है अकथ है। जे हो जाना जे मैं जान भी ले आखा नाही कहना नहीं, क्यों कहना कथन ना जाए, कथनी च नहीं आऊंगा। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथना जाए। जिन्हें इस अगम्मी दुनिया नु प्राप्त किया उसका कोई प्रत्यक्ष सबूत ना दे सके, और है भी नहीं। प्रत्यक्ष सबूत सीमत दा हुंदा, असीम दा नहीं हुंदा। जिन्हें ने उस अगम्मी दुनिया की झलक का आनंद माणिया वो कोई प्रत्यक्ष सबूत दे ना सके। जिन्हों इस अगम्मी दुनिया की झलक ना मिली वो बड़े प्रबल बल झूठे सबूत कट्ठे करके धुआं धार तकरीरां दे राही नास्तिकता नु जन्म दे गए। मैं एक दफा फिर दोहरावां ते समाप्ति करा। कार्ल मार्कस दे विचारां तो वक्ती तौर ते अद्धी दुनिया प्रभावित हो गई सी। चाइना, टैनजानिया, कोरिया, लाओस, कंबोडिया, चेकोस्लोवाकिया, बल्गारिया, पोलैंड, अद्धा जर्मनी, पूरा रशिया, ये सारा उस तो प्रभावित हो गया सी। इतनी दुनिया किसी वड्डे तो वड्डे पैगंबर तो भी प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि पैगंबरां की गल अंतरमुखी है, उहदी गल सिर्फ बारमुखी सी, बारमुखी सी। और जद कभी कोई मनुख पूर्ण तौर पर अंतरमुखी हो जाता है वही भगत है। तो भगती की जो रूपरेखा धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी चित्र दी, मैं फिर कल थोड़े सामने रखने की कोशिश करांगा। समा हो गया। साहब रहमत करन, बख्शिश करन, सानू उस अगम्य अवस्था की झलक देन जिस झलक का धन गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी जिक्र कर दी है। हुण आप गुरबाणी का एक शब्द कीर्तन दे राही सरवण करो। आनंद साहब का पाठ, फुल चुग दी शमा। वाहेगुरु जी का खालसा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ 1550 AM। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ 1550 AM। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
3: ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
4: ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੀਅਲਟਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਹਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ, ਜੋ ਆਪਣੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਰੀਮੈਕਸ ਦੇ ਟਾਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਰੀਅਲਟਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
3: ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ।
4: ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਨੂੰ
3: 604-351-5111 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 604-351-5111 ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ।
5: 107.7 Pulse FM is a proud supporter of the Starfish Pack program in Surrey. Every Thursday, volunteers from the Lower Mainland get together to help pack two ready-made breakfasts, lunches, dinners, and snacks into a backpack to be delivered to hungry children on Fridays. These kids are then able to enjoy the nutritious and delicious food with their families over the weekend and be healthy and ready for school on Monday. The Surrey Starfish program is currently seeking donations and volunteers to help families in need. If you're interested in helping out, head to starfishpack.com, an initiative of Pulse FM Cares.
6: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ, ਟੈਕਸ ਪੇਪਰ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਲ 604-325-8370 6043258370।

फिर अवतारी पुरुष दी सोचनी शब्द लंबे समय तक कम करे, जो मैं जाने बहुत सारी दुनिया जान लवे, जो मैं समझे है बहुत ही समझ जान। कहिंदे ने जद बाहर दा धन बंदे नू प्राप्त होंदा है तो मनुख उस नू छुपांदा है और एक शूमपणा भी पैदा होंदा है, मैं ही चोटी का धनवान बन जावा, बाकी नहीं, बाकी मेरी बराबरी से नहीं आना चाहिए। राजनीति भी इस ते खड़ी है। राजनीतिक हमेशा उसे तो डरदा है जिहड़ा उसके पिछे खड़ा होंदा है, नंबर दो ते उहदी कोशिश होंदी है किसनूं ऐसा धक्का मारीए बहुत पिछे चला जाए, क्योंकि जिहड़ा मेरे पिछे खड़ा है एक कदम इसने पुटिए तो मेरी बराबरी से आ जाएगा, और एक कदम पुटिए तो अगे निकल जाएगा। इस वास्ते राजनीतिक जिस जीने ते चढ़ के सिंघासन तक पहुंचते हैं उस जीने नु तोड़ देंगे, उस पौड़ी नु तोड़ देंगे, दूजा ना चढ़े। लेकिन जिस जीने ते चढ़ के एक अवतारी पुरुष परमात्मा तक पहुंचता है उस जीने नु संवारदा है, शिंगारदा है, ताकि होर भी पहुंचे, और भी पहुंचे, बस इन्नी होगी। जो मैं जाने सारा जगत जान लवे, नौखंड पृथ्वी का भ्रमण है गुरु नानक का, हैरानगी है। जो मैं जाने सारा संसार जान लवे, जो मैं रस माने सारे ही रस मान लें, जो आनंद मेरे कोल है सारे ही मान लें। जगह जगह उस शब्द नु सुना दे रहे, तो शरीर ते समय का हिस्सा है, बिरद हो गया शरीर। मैं फिर अर्ज करा, तन चाहे अवतारां दा है, देवी देवतियां दा है, किसे दा भी है, तन नू काल खा जाएगा। काल पाए ब्रह्मा बवदरा, काल पाए शिवजू अवतारा, काल पाए कर विसन प्रगासा, सकल काल का कियो तमाशा। समय दे जो कुछ बनया मिटेगा, शरीर समय दे बनया, काल दे बनया। इस वास्ते गुरु घर दे कह दिता, शरीर गुरु नहीं है तो मिट जाता, फिर की करोगे, फिर की करोगे। शब्द लंबे समय तक कम करे, उसे शब्द नू प्रवेश करा दिता गुरु नानक ने लेने दे अंदर। वो धन गुरु अंगद देव जी महला दूजा, मकान दूजा, वो शब्द हुण दूजे मकान दे, तीजे मकान दे, चौथे मकान दे। जोत ओहा जुगत सहकाया फेर पलट गए। श्री कृष्ण प्रगट होए गीता दे राहीं, गीता नू एक पासे कर दो, कृष्ण की होंद नहीं प्रगट हो सकती गुस्ताखी नाल। हर मनुख अपने बोल दे प्रगट होंदा है, परमात्मा तक बोल दे प्रगट होया शब्द दे। कुरान दे राही मुहम्मद साहब प्रगट होए, ना निकलदी कुरान ते पता नहीं कितने संत भगत इस दुनिया च होए। और केते तुदनु गावन से मैं चेतना आवन, नानी क्या विचारे, हे प्रभु पता नहीं कितनिया ने तेनू गावे है, तेरे नाल जुड़ गए, मुक्त भी होए, पर उन्होंने कदमों के निशान जमीन ते नहीं बने, कुछ बोले ही नहीं। परमात्मा के शब्द नू प्रगट ना कर सके, शब्द का आनंद माण सके, शब्द नाल जुड़ के मुक्त हो गए, पर शब्द नू उस अनुभव नू प्रगट ना कर सके। जिहड़े प्रगट कर सकते हैं अवतार श्रेणी च, वो आ जाते हैं। फिर भारत के ऋषि मुनिया ने वंड की थी, चार कला अवतार है, अठ कला अवतार है, अंसा अवतार है, अंश मात्र है। अपने बोलों के राही किसी ने थोड़ा प्रगट किया, किसी ने बहुत प्रगट किया, किसी ने बहुत प्रगट किया, कोई 16 कला अवतार है। अवतार मैं फिर अर्ज करा, परमात्मा तो शब्द होया, शब्द तो संसार होया। उस शब्द की है जिस तो संसार होया है, संसार आया है, तो जिस शब्द दे राही संसार आया है, संसार उसे ही शब्द दे राही वापस भी जाएगा। उत्पत परले शब्दे होवे, जो उत्पत्ति उस तो हुई है तो परले भी उस तो। जिस दरवाजे दे राही तुसी गुरुद्वारा साहब दे अंदर आए हो, इसी दरवाजे राही बाहर जाओगे, और की

जे किसे कर न्याणा होवे कदी किसे क्या भी बधाई होवे तुहाडे कर कल भाणा वापर गया तुहाडे कर न्याणा होया भाणा वापर गया क्योंकि हुक्म ते भाणा लफ्ज असी दुखांत नूं जोड़िया गुरु ने पहलियां पौड़ियां च कहा नहीं हो सिखा हुक्म शब्द बड़ा वड्डा है ए सुख भी है ते इहदे विच दुख भी है फिर बेनती हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी खोवन आकार हुक्म न कहा जाई करे सो चंगा मन में बेनती करे हुक्मी खोवन आकार हुक्म न कहा जाई हुक्मी खोवन जी हुक्म मिले वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाईए एक ना हुक्मी बख्शी से हुक्मी सदा पवाईए मेरी बेनती तो सारिया पौड़ी नाल पढ़ी पर ध्यान दिया जी अर्था वाल हुक्म विच ही वडियाई है हुक्म विच ही अपमान है हुक्म विच ही मौत है हुक्म विच ही जन्म है हुक्म विच ही सुख है हुक्म विच ही दुख है पर इस हुक्म दी समझ तां पैंदी जद दिन बंदे दी ईगो मरेगी क्योंकि ईगो नहीं समझ देंदी ईगो कहिंदी मैं करन वाला फिर पौड़ी पढ़ लिये हुक्मी खोवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी खोवन जी हुक्म मिले वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाईए एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाईए हुक्म अंदर सब को बार हुक्म ना कोय नानक हुक्म जे बुझे ता खौमे कहे ना कोय ओ खौमे च नहीं कहिंदा मैं फिर बेनती करांगा जी इस गल नूं मैं ज्यादा जोर सिर्फ इसी ते देना है के करे चो सो चंगा मान दुई गणत लाखे जो कर रहा बस नूं स्वीकार कर ले अक्सर असी जदो ए मैं हुण भाणा शब्द वरते है ते ए आनंद साहिब च रोज पढ़ने जी जां तिस भाणा तां जम्मिया भाणा वापरिया ते बंदे दा जन्म होया परिवार भला पाया एक असी घटना अक्सर सुनाने आ भाई भिखारी जी दी मैं साखी नहीं सिर मैं तीन गल्लां चो करनियां ने कि तस्लीम कर लेना भी जो हो रहा मेनू मन्ना गा अगे असी बाणी चो देखांगे क्योंकि जो गुरु जी दी तां बाणी दे प्रमाण लई दे ने मता कोई सोचे शायद अपने कोलो हुण असी जदों महाराज जी दे सिख बारे पढ़ने आ भाई भिखारी बारे ते जेड़ा सिख इनू मिलन गया ओदा नाम दरअसल सी भाई गुरमुख बच्चे दा विआह सी आप सब नूं पता है भी जवान पुत्र दा विआह कर इन्ना खुशियां खेड़े पर भाई भिखारी जी जेड़े ने ओह तप्पड़ सींदे पए सन ते जदों दूजे दिन व्यांदड़ मुंडा ही जिहदी बरात गई ओही मर गया ते वापस आए ते भाई भिखारी जी अज कल जिस बच्चे दे विआह विच इन्ने साजो समान घर कट्ठा करी बैठे सन ते अज तप्पड़ विछा के उस बच्चे दी मंजी दे कोल बैठ के ओह बंदगी कर लग पए उत्थे उहनां नूं पुछया गया भी जे तुहानूं पता सी संस्कार तो बाद ते तुसी ए गल कल क्यों ना कीती तुसी भेद क्यों ना खोलिया ओह कहन लगे सिक्खी विच जिस बंदे ने मुक्त होना तीन गल्लां चेते रखे ए तीन लफज उत्थे भी ने तां ते भो गुरमुख सुन लीजै ए भाई गुरमुख मेरी गल सुन भाणा मानन मन थिर कीजै भाणा मनन वास्ते मन नूं अडोल बना किवें जिवें उस्ताद अपने विद्यार्थी नूं साल दो साल पांच साल दस साल वीह साल पढ़ांदा है ते वीह पच्ची साल बाद फिर ओह परचा पा के कहिंदा है ओह सवाल पांदा है परचे पांदा है कहिण लगे वीह साल दी तैयारी एक दिन दे परचे पता लग जांदा है कई वारी किन्ने किन्ने साल कीती हुई बंदगी इहो जी घटना वापरदी मौत ते दुख बन के उस बंदगी दा परचा पै जांदा है कहने भाई याद रखी तैयारी हुण आप मेरे वर्गा ते कह देना कोई नहीं गुरु परचे पांदा पे प्यारे हो परचा भी तो ओहदा पैंदा जिहड़ा पढ़िया जिहड़ा पढ़ी कोई नहीं ओहदा परचा की इत्थे भाई साहिब कहिंदे ता ते पो गुरमुख सुन लीजै भाणा मानन मन थिर कीजै सत नाम को सिमरन करनो तन हंता को हृदय विसरनो एक शरीर दा मोह छड़ दे दूजा सिमरन कर तीसरा भाणा मनन वास्ते तैयार रहा कर मुक्ति के मार्ग तीन कह गुरु अर संत पर भी मैं अर्ज करांगा जी करे सो चंगा मान जो करदा चंगा मन ले जे नहीं मन्नांगे

0: नानक कहूं नसी जई बिन नामे पत जाए अष्टपदी।
1: दस वसूले पाछे पावे,
0: एक वस्त कारण बिखो टकवावे,
1: एक पीना दे दस पी हिरले,
0: दो मूड़ा को कहां करे,
1: जिस ठाकुर से नाही चारा,
0: ताको कीजे सद नमस्कार,
1: जाके मन लगा प्रम मीठा,
0: सर्व सुखता हूं मन बुठा,
1: जिस जन अपना हुक्म मनाया,
0: सर्व सुख नानक तिन पाया,
1: अगंत शाह अपनी दे रास,
0: आत पीत बरते अनंत उलास,
1: अपनी ईमान कछ बहो शाह होले,
0: अज्ञानी मन रोस करे,
1: अपनी प्रतीत आप ही घोवे,
0: और उसका विश्वास न हो,
1: बस्ते सागर रखे,
0: रोकी आज्ञा मन नै मथ,
1: उसते चौगन करे निहाल,
0: नानक साहिब सदा दयाल,
1: नानक पात माया के हित,
0: सरपुर होवत जान अनेत,
1: बिरख की छाया स्यों रंग लावे,
0: ओ बिन सह ओ मन पछतावे,
1: जो दिसै सो चालन हार,
0: लपटर होत अंधे अंधार,
1: घटाउ स्यों जो लावे नेह,
0: ताको हाथ न आवे के,
1: मन हर के नाम की प्री सुखदाई,
0: कर कृपा नानक आप ले लाई,
1: मिथ्या तन धन कुटुंब सुपाया,
0: मिथ्या होमे ममता माया,
1: मिथ्या राज जोगन धन माल,
0: मिथ्या काम क्रोध विकराल,
1: मिथ्या हस्ती असु वस्त्रा,
0: मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता,
1: मिथ्या ध्रो मोह अभिमान,
0: मिथ्या आपसे ऊपर कर्त गुमान,
1: सिर भक्त साध की शरण,
0: नानक जप जप जीवै हर के चरण,
1: मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहे,
0: मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे,
1: मिथ्या नेत्र पेकत पात्रया रूपाद,
0: मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद,
1: मिथ्या जन्म पर विकार को तावहे,
0: मिथ्या मन पर लोभ लबावे,
1: मिथ्या तन नहीं पर उपकारा,
0: मिथ्या बास लेत बिकारा,
1: बिन बूझे मिथ्या सब भये,
0: सफल दे नानक हर हर नाम लये,
1: बिरति साक्त की आरजा,
0: साच बिना कह हो सुचा,
1: बिरथा नाम बिना तर अंध,
0: मुखे आवतता कह दुर्गंध,
1: बिर सिमरन दिन रैन बिरथा विहाए,
0: एक बिना ज्यों खेती जाए,
1: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम,
0: कृपन के निरार्थ दाम,
1: धन तन तेजन दे कट बस्यो हर नाऊ,
0: नानक ताके बल बल जाओ,
1: रहते अवर कश अवर कमावत,
0: मन ही प्रीत मुखों गंड लावत,
1: जानन हार प्रभु प्रवीण,
0: बाहर पीक न काहू भीन,
1: अवर उपदेश है आप न करे,
0: आवत जावत जन मैं मरे,
1: जिसके अंतर बसे प्रभाप,
0: जिसकी सीख तरह संसार,
1: जो तुम भाने दिन प्रभ जाता,
0: नानक निजन चरण पराता,
1: करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने,
0: अपना किया आपे मन,
1: आप ही आप करतन बेरा,
0: किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा,
1: पाप से अनप सकल ते रहत,
0: सब कछ जाने आत्म की राहत,
1: जिस भावे तिस लये लड़ लाए,
0: शांत अनंतर रहा समाए,
1: सो सेवक जिस कृपा करी,
0: निमक निमक जप नानक हरी श्लोक,
1: काम क्रोध अर लोभ मोह तिस जाए अंगेव,
0: नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी।
1: जे प्रसाद छति अमृत खाहे,
0: जिस ठाकुर को रख मन माहे,
1: जे प्रसाद सुगंधित तन लावहे,
0: जिसको सिमरत परम गत पावे,
1: जे प्रसाद बसे सुख मंदर,
0: चैते आये सदा मन अंदर,
1: जे प्रसाद गृह संग सुख बसना,
0: आठ पहर सिमरो तिस रसना,
1: जे प्रसाद रंग रस भोग,
0: नानक सदा धियाइए ध्यान जोग,
1: जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावहे,
0: जिसे त्यागत अवर लुभावे,
1: जे प्रसाद सुख सेज सोई जय,
0: मन आठ पहर ताका जस कविजे,
1: जे प्रसाद तुल सब पू मान,
0: मुक्ता को जस रसन बखाना,
1: जे प्रसाद तेरो रहता धर्म,
0: मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म,
1: रब जी जपत दरगाह मान पावहे,
0: नानक पत से ती कर जावे,
1: जे प्रसाद अरो कंचन देही,
0: निबला बोत सराम स्नेही,
1: जे प्रसाद तेरा ओला रहत,
0: मन सुख पावे हर हर जस कहत,
1: जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके,
0: मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताके,
1: जे प्रसाद तुझ को न पहुंचे,
0: मन सास सास सिमरो प्रभ उचे,
1: जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे,
0: नानक ताकी भगत करे,
1: जे प्रसाद अभूखन पहरीजे,
0: मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजे,
1: जे प्रसाद असवस्त सवारी,
0: मन तिस प्रभ को कभू न बिसारी,
1: जे प्रसाद बाग मिलख तना,
0: राग प्रय प्रभ अपने मना,
1: जिन तेरी मन बंत बनाई,
0: उठत बैठ सत्य सह ध्याई,
1: जिसे ध्याई जो एक लख है,
0: इहां उहां नानक तेरी रख है,
1: जे प्रसाद करहे पुन बहुदान,
0: मन आठ पहर कर तिसका ध्यान,
1: जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी,
0: जिस प्रभ को सास सास तारी,
1: जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप,
0: सो प्रभ सिमरो सदा अनूप,
1: जे प्रसाद तेरी नीकी जात,
0: सो प्रभ सिमर सदा दिन रात,
1: जे प्रसाद तेरी पत रहै,
0: गुर प्रसाद नानक
1: जे प्रसाद सुनहे कर्ण नाद,
0: जे प्रसाद पेखे विस्माद,
1: जे प्रसाद बोलहे अमृत रसना,
0: जे प्रसाद सुख सहजे बसना,
1: जे प्रसाद हस कर चलहे,
0: जे प्रसाद संपूर्ण फल है,
1: जे प्रसाद परम गत पावहे,
0: जे प्रसाद सुख सहज समावे,
1: ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लग हो,
0: गुर प्रसाद नानक मन जागो,
1: जे प्रसाद तू प्रकट संसार,
0: इस प्रभ को मूल न मनो विसार,
1: जे प्रसाद तेरा प्रताप,
0: जे मन मूढ़ तू ताको जाप,
1: जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे,
0: इसे जान मन सदा हजूरे,
1: जे प्रसाद तू पावे साच,
0: जे मन मेरे तू तासे राज,
1: जे प्रसाद सबकी गत होए,
0: नानक जाप जपे जप सोए,
1: आप जपाई जपे सोनाओ,
0: आप गवाए सो हर गुण गाओ,
1: प्रभ कृपा ते होए प्रकाश,
0: प्रभु दया ते कमल विकास,
1: प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए,
0: प्रभु दया ते मत उत्तम होए,
1: सर्व निधान प्रभ तेरी माया,
0: आपो कछु न किन्हु लया,
1: जित जित लाभ हो तित लगहे हर नाथ,
0: नानक इनके कछु न हाथ, श्लोक
1: अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह समुखता होए।
0: सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी
1: साध का संग मुख उजल होत,
0: साध संग मन सगली खोत,
1: साध का संग मिटे अभिमान,
0: साध का संग प्रकट है सुज्ञान,
1: साध का संग बुझे प्रभ नीरा,
0: साध संग सब होत नबेरा,
1: साध का संग पाए नाम रतन,
0: साध का संग एको ऊपर जतन,
1: साध की महिमा वर्णे कौन पुरानी,
0: नानक साध की शोभा प्रभ महे समानी,
1: साध का संग अगोचर मिले,
0: साध का संग सदा प्रफुल्ल,
1: साध का संग आवे बस पंचा,
0: साध संग अमृत रस कुंचा,
1: साध संग होय सब पी रेन,
0: साध का संग मनोहर बैन,
1: साध का संग न कथू पावे,
0: साध संग अस्तित मन पावे,
1: साध के संग माया ते भिन्न,
0: साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न,
1: साध संग दुश्मन सब मीत,
0: साधु के संग महापुनीत,
1: साध संग किसो नी बैर,
0: साध के संग न बीगा पैर,
1: साध के संग नाही को मंदा,
0: साध संग जाने परमानंदा,
1: साध के संग नाही हों ताप,
0: साध के संग तो जैसा व्याप,
1: आपे जाने साध पढ़ाई,
0: नानक साध प्रभु बने आई,
1: साध के संग न कभू पावे,
0: साध के संग सदा सुख पावे,
1: साध संग बस अगोचर लहे,
0: साधु के संग अजर सहे,
1: साध के संग बस है थान ऊंचे,
0: साधु के संग महर पहुंचे,
1: साध का संग दृढ़ सब धर्म,
0: साध का संग केवल पार ब्रह्म,
1: साध का संग पाए नाम निधान,
0: नानक साधु के कुर्बान,
1: साध का संग सब कुल उधार है,
0: साध संग साधन मीत कुटम निस्तार है,
1: साधु का संग सो धन पावे,
0: जिस धन ते सब को बरसावे,
1: साध संग धर्म राय करे सेवा,
0: साध का संग सो बासुर देवा,
1: साधु का संग पाप पलायन,
0: साध संग अमृत गुण गायन,
1: साध का संग सर्व थान गम,
0: नानक साध का संग सकल जनम,
1: साध का संग नहीं कशकाल,
0: दर्शन भेट होत निहाल,
1: साध का संग कुलूखत हरै,
0: साध का संग नरक पर हरै,
1: साध का संग इहा उहा सुहेला,
0: साध संग विश्वतर मेला,
1: जो इच्छा सोई फल पावे,
0: साध के संग न बिरथा जावे,
1: पार ब्रह्म साध रित बसे,
0: नानक कुदरे साध सुन रसे,
1: साध के संग सुनो हर नाव,
0: साध संग हर के गुण गावे,
1: साध के संग न मन ते बिसरे,
0: साध संग सर पर निस्तरे,
1: साध के संग लगे प्रभ मीठा,
0: साधु के संग करकट जीठा,
1: साध संग भय आज्ञाकारी,
0: साध संगत भई हमारी,
1: साध के संग मिटे सब रोग,
0: नानक साध भेटे संजोग,
1: साध की महिमा वेद न जाने हैं,
0: जिता सुन तेता बखियान,
1: साध की उपमा तेह गुण ते दूर,
0: साध की उपमा रही भरपूर,
1: साध की शोभा का नाही अंत,
0: साध की शोभा सदा बेअंत,
1: साध की शोभा ऊंच ते ऊंची,
0: साध की शोभा मूच ते मूची,
1: साध की शोभा साध बनाई,
0: नानक साध प्रभ भेद न पाई श्लोक,
1: मन साचा मुख साचा सोए,
0: अवर न पेख कस बिन कोए,
1: नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए।
0: अष्टपदी
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप,
0: जैसे जल में कमल लेप,
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख,
0: जैसे सूर सर्व को सुख,
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान,
0: जैसे राज रंक को लागे तुल पवान,
1: ब्रह्म ज्ञानी के तीर एक,
0: ज्यो बसदा को खुद को चिंदन ले,
1: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ,
0: नानक ज्यो भाव का सह स्वभाव,
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला,
0: जैसे मैल न लागे जला,
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश,
0: जैसे तर ऊपर आकाश,
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान,
0: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान,
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा,
0: मन अपने है सबते नीचा,
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भये,
0: नानक जन प्रभ आप करे,
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना,
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना,
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया,
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया,
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी,
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी,
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता,
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता,
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान,
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उप्रयास,
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश,
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा,
0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा,
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा,
0: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा,
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय सुफला,
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला,
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार,
1: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग,
0: ब्रह्म ज्ञानी का बसे प्रभ संग,
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार,
0: ब्रह्म ज्ञानी का नाम प्रवार,
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत,
0: ब्रह्म ज्ञानी अंगुद त्यागत,
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद,
0: ब्रह्म ज्ञानी का कर सदा आनंद,
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश,
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता,
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता,
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय अचिंत,
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र,
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप,
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है,
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए,
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे है महेश्वर,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर,
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है,
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगलवान माहे,
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने थे,
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश,
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदाखर,
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर,
1: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना,
0: ब्रह्म ज्ञानी की कर ब्रह्म ज्ञानी जाने,
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार,
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता,
0: ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता,
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता,
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता,
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ,
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ,
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार,
0: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार,
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक,
1: और तारै जो अंतर नाम, सर्व में देखे भगवान, निमक निमक
0: ठाकुर नमस्कार, नानक ओह अप परस सगल निस्तार अष्टपदी
1: मिथ्या नाही रसना परस
0: मन में प्रीत नरंजन दर्श
1: कत्रिया रूप न देखे नेत्र
0: साधक टहल संत संग हेत
1: कर्णन सुने काहू की निंदा
0: सत्य जाने आपस को मंदा
1: और प्रसाद विखिया पर हर है
0: मन की वासना मन ते टर
1: इंद्रियत पंच दोख ते रहत
0: नानक कोट मदे को ऐसा परस
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विष्ण की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म कर्त हो वैने कर्म
0: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बंश
0: केवल भगत कीर्तन संग्रचय
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप दृढ़ अवरह नाम जपावे
0: नानक हो वैष्णो परम गत पावे
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्याग दुष्ट का संग
1: मन से बिन से सगला परम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवे
0: इस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत
0: मन तन अर्पे विष्ण प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है
0: राम नाम आत्म सुध है
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
1: हर की कथा हृदय बसावे
0: सो पंडित फिर जो न आवे
1: वेद पुराण सिमरत बूझे मूल
0: सुख मै जाने अस्थूल
1: वरना को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदा देश
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान
0: जो वरना में जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: सा संग पावे जन कोई
1: कर कृपा अंतर उतार है
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतार है
1: सर्व रोग का औखद नाम
0: मंगल गुण गाम
1: काहू जुगत कित न पाइये धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम किस नदरी आया
0: दास संतन पाए तिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दर का परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: जिस दास को सब सोजी पर है
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: सब की आज्ञा आत्म हिता वै
0: जीवन मुक्त सो कहावे
1: ऐसा हक तैसा उस सोग
0: सदा अनंत नहीं बियोग
1: ऐसा स्वर्ण तैसी उस माटी
0: ऐसा अमृत तैसी बिकाटी
1: ऐसा मान तैसा अभिमान
0: ऐसा रंग तैसा राजान
1: जो बरताये साई जुगत
0: नानको प्रख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाओ
0: जित जित कर रखे तैसा तिन नाम
1: आपे कर्म करावन जोग
0: भावे सो ही पन होग
1: असरियो आप होए अंत तरंग
0: लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा प्रकाश
0: पार ब्रह्म करता अविनाश
1: सदा सदा सदा दयाल
0: सिमर सिमर नानक पहे निहाल श्लोक
1: उस्त करे अनेक जन अंत न पारावार
0: नानक रचना प्रभ रची बहुविधानक प्रकार अष्टपदी
1: कई कोट होए पुजारी
0: कई कोट आचार व्यवहारी
1: कई कोट पै तीर्थ वासी
0: कई कोट मन प्रमय उदासी
1: कई कोट वेद के स्रोते
0: कई कोट तपीसर होते
1: कई कोट आत्म ध्यान धारी
0: कई कोट कब काव विचारे
1: कई कोट नवतन नाम त्या वहे
0: नान करते का अंत न पावे
1: कई कोट पै अभिमानी
0: कई कोट अंध अज्ञानी
1: कई कोट कृपन कठोर
0: कई कोट अभिग आत्म ने को
1: कई कोट पर दर्प को हिरहे
0: कई कोट पर दुख न करे
1: कई कोट माया श्रम माहे
0: कई कोट पर देश परमा है
1: जित जित लाभ होते तित लगना
0: नानक करते की जाने करता रचना
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी
0: कई कोट राजे रस भोगी
1: कई कोट पंखी सर्प उपाए
0: कई कोट पात्र बृख न बजाए
1: कई कोट पवन पानी में संतर
0: कई कोट देश भूमंडल
1: कई कोट शशि सूर नक्षत्र
0: कई कोट देव दानव इंद्र शिर छत्र
1: सगल समग्री अपने सूत धार है
0: नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है
1: कई कोट राजस ताम सातक
0: कई कोट वेद प्राण स्मृति अर्शास
1: कई कोट की रतन समुंद
0: कई कोट नाना प्रकार जंत
1: कई कोट की ये चिर दीवे
0: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे
1: कई कोट जख के निर्पसाच
0: कई कोट भूत प्रेत सु कर मृगाच
1: सबे नेरा सब हूं ते दूर
0: नानक आप लिपत रे भरपूर
1: कई कोट पाताल के वासी
0: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी
1: कई कोट जन्म है जीव है मर है
0: कई कोट बहुत जोनी फिर
1: कई कोट बैठ सही खाहे
0: कई कोट काले तक पाहे
1: कई कोट की ये धनवंत
0: कई कोट मैं चिंत
1: जय जय भाणा तह तह राखे
0: नानक सब कुछ प्रभ के हाथे
1: कई कोट भये वैरागी
0: राम नाम संग तिन लिव लागी
1: कई कोट प्रभ को खोजंते
0: आत्म मह पार ब्रह्म लहंते
1: कई कोट दर्शन प्रभ प्यास
0: जिनको मिले हो प्रभ विनाश
1: कई कोट मांगे हैं सत्संग
0: पार ब्रह्म तिन लागा रंग
1: जिनको होए आप सो प्रसन्न
0: नानक तेजन सदा धन धन
1: कई कोट खानी अरखंड
0: कई कोट आकाश ब्रह्मंड
1: कई कोट होए अवतार
0: कई जग की नो विस्तार
1: कई बार पसरियो पासार
0: सदा सदा एक एक अंकार
1: कई कोट कीने बहु भांत
0: प्राप्त होए प्रभ माहे समात
1: ताका अंत न जाने कोई
0: आपे आप नानक प्रभ सोए
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास
0: जिनहो वत्या तुम प्रगास
1: कई कोट तत् के देते
0: सदन हारे एको नेत्रे
1: कई कोट नाम रस पीव है
0: अमर पय सद सद ही जीव है
1: कई कोट नाम गुण गावे
0: आत्म रसुख सह समावे
1: अपने जन को साथ साथ संभारी
0: नानक हे परमेश्वर के प्यारे श्लोक
1: करण कारण प्रभ एक है दूसर नाहीं कोई
0: नानक तिस बलहार ने ਜਲ ਥਲ ਮਈ ਅਲ ਸੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ
1: ਫਿਰ ਮੈਂ ਥਾਪ ਥਾਪ ਨਹਾਰਾ
0: ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ
1: ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਾਰ ਰਹਾਵੈ
0: ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ
1: ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ
0: ਹੁਕਮੇ ਐਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ
1: ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ
1: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਮਨ ਉਗਤ ਪਾਵੈ
0: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਤਰਾਵੈ
1: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖੈ
0: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ
1: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤ ਉਧਾਰੈ
0: ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਣ ਵਿਚਾਰੈ
1: ਦੋਹਾਂ ਸਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ
0: ਖੇਲੈ ਵਿਕਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ
1: ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ
0: ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰਨ ਆਵੈ
1: ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ
1: ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਪਿਛਲੇ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ
1: ਮਨ ਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ
0: ਜੇ ਜਾਣਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚੈ
1: ਧਰਮੇ ਭੁੱਲੈ ਦਹਿ ਦਿਸਤਾਵੈ
0: ਨਮਕ ਮਾਹੀ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਫਿਰਿਆਵੈ
1: ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ
0: ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ
1: ਛਿਨ ਵਹਿ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ
0: ਬਾਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ
1: ਜਾਂ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ
0: ਇਸ ਤਰਕਾਲ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ
1: ਜਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼
0: ਨਾਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਣੇ ਜਗਦੀਸ਼
1: ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ
0: ਕਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ
1: ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ
1: ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾ ਹੀ ਇਸਹਾ
0: ਕਲ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ
1: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪਰਾ ਜੀਓ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫਨ ਥੀ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਬਸੈ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸੋਗ ਹਰ ਕਰੰਗ ਹੱਸੈ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਊਬਕ ਆਸ ਪਿਆਲ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ
0: ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਨ ਹਾਰ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸੋਏ ਰਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਆਪ ਕੀਰਤ ਮਹਿ ਆਵੈ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ
1: ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ
0: ਵਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕਹੈ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਮੋਹਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ
0: ਅਨਕ ਜੋਨ ਪਰਮਿਆ ਪਰਮੀਆ
1: ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸਵੰਗੀ ਦਿਖਾਵੈ
0: ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨ ਚਾਵੈ
1: ਜੋ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਾਵੈ
0: ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੋਰ ਨ ਆਵੈ
1: ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼
1: ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇਕ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਬਸੈ ਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ
1: ਜਿਉ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਕਟਾਨਾ
0: ਜੋ ਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ
1: ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਸਲੋਕ
1: ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ
0: ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ
0: ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ
1: ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤ
0: ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ
1: ਆਪ ਸੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ
0: ਜਨਮ ਮਰੈ ਭਉ ਜੋਨ ਪਰਮਾਵੈ
1: ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ
0: ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ
1: ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ
0: ਨਾਨਕੀ ਹੈ ਮੁਕਤਿਆ ਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ
1: ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਭਾਵੈ
0: ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਾ ਸਚੰਗ ਨ ਜਾਵੈ
1: ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਨੁੱਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ
0: ਸਰ ਭੀਤਰਤਾ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼
1: ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ
0: ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਵੰਤ
1: ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਦੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ
0: ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਂ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ
0: ਸੋਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ
1: ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹੋਂ ਧਾਰੀ
0: ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੇ ਸਕਲੇ ਬਰਥਾਰੇ
1: ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰ
0: ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ
1: ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ
0: ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਉ ਕੈਸੇ ਗਵੈ
1: ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ
0: ਕਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ
1: ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ
0: ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ
1: ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ
0: ਜਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ
1: ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ
0: ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ
1: ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ
0: ਤਬ ਲਗ ਨੇਚਰ ਨਾਹੀਂ ਚੀਤ
1: ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ
0: ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇਸ ਜਾਏ
1: ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਾਂ ਛੁਟੈ
1: ਸਹਿਸ ਕਟੇ ਲਖ ਕੋਟ ਧਾਵੈ
0: ਰਤਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ
1: ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ
0: ਨੈ ਤਕਤਾਵੈ ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ
1: ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ
0: ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ
1: ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ
0: ਵਿਭਾਗੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ
0: ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ
1: ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ
0: ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
1: ਜੋ ਕਿਛ ਪੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣਾ ਰੰਗ
0: ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੈ ਸੰਗ
1: ਦੂਜਾ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਵਿਵੇਕ
0: ਆਪੇ ਏਕਾ ਪਿਆ ਨੇ
1: ਮਰੈ ਨਾ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਸਭ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ
1: ਆਪ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪ
0: ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ
1: ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਣ ਵਿਸਥਾਰ
0: ਸਭ ਕੁਛ ਉਸਕਾ ਉਹ ਕਰਨੈ ਹਾਰ
1: ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛ ਹੋਏ
0: ਆਂਤ ਨੰਤਰ ਏਕੈ ਸੋਏ
1: ਆਪਣੇ ਚਲਿਤ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ
0: ਗੌਤ ਕਰੇ ਰੰਗ ਅਪਾਰ
1: ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੀ
0: ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ
1: ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਿਖਿਆਨੀ
1: ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਸਭ ਕੀਨਾ
0: ਕੋਟ ਮਦੈ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਚੀਨਾ
1: ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ
0: ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ
1: ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ
0: ਘਟ ਘਟ ਸੁਣੀ ਸਰ ਹੁਣ ਵਿਖਿਆਣੀ
1: ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਨੀਤ
0: ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਲੋਕ
1: ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰ ਨਹਾਰ
0: ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਹਾਰ ਜਾ ਘਟੈ
0: संत का दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत का दुखन सुख सब जाए
0: संत का दुखन नरक में पाए
1: संत का दुखन मत हो हे मलीन
0: संत का दुखन सोभा देहीन
1: संत के हथे को रखे न कोई
0: संत का दुखन थान भ्रष्ट हो
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग निंदक भीतर
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन का दुखन काग ज्यो लवे
1: संतन का दुखन सर्प जोन पाए
0: संत का दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन का दुखन तृष्णा नह जले
0: संत का दुखन सब को छले
1: संत का दुखन तेज सब जाए
0: संत का दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाओ को नाही
0: नानक संत भावे ता ए पी कत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक खिन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज ते हीन
0: संत का निंदक दुखिया अर्दीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दोख मैं दोख
0: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा पवित्र
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित्र
1: संत के दुखी को डान लगे
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते तरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाओ
0: नानक संत भावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे
0: संत का दुखी कित काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उदयान परमाइए
0: संत का दुखी उजड़ पाइए
1: संत का दुखी अंतर ते सोथा
0: जो सास बिना मृतक की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस नाही
0: अपन बीजा पे ही खाए
1: संत के दुखी को अवर न रखन हार
0: नानक संत भावे ता लय उबार
1: संत का दुखी इउ बिल लाए
0: इउ जल बिन हुन मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटे अकेला
0: जो बुआर तिर खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: कीर्तन दुखा तुर ही पया
0: नानक जो तिस भावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइए
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइए
1: संत के दुखी की पूजा न आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न दृष्टे कोई
0: जैसा भावे तैसा कोई होए
1: पया कीर्तन मिटे कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसकी ओ करने हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: रापी उसत करहो दिन रात
0: तिसे त्यागो सास गिरा
1: सब कछ वर्त तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे
0: वडपा की नानक जन से श्लोक
1: तजो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर गाए
0: एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए अष्टपदी
1: मनुख की टेक बिरथी सब जान
0: देवन को एक है भगवान
1: जिसके दिया रह अगाए
0: और न तृष्णा लागे आए
1: मारे रखे एको आप
0: मानक कृष्णा ही हाथ
1: जिसका हुक्म भू सुख होए
0: जिसका नाम रख कंठ परोए
1: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए
0: नानक विघ्न न लागे कोए
1: उसत मन में कर निरंकार
0: धर्मन मेरे सत व्यवहार
1: निर्मल रसना अमृत पियो
0: सदा सहेला कर ले जियो
1: नैनो बेग ठाकुर का रंग
0: सह संग बिन सह सब संग
1: चरण चलो मार्ग गोविंद
0: मिटा पाप जपिए हर बिंद
1: हर हर कर्म श्रवण हर कथा
0: आदर ज्ञान नानक उजल मथा
1: बड़ भागी ते जन जग माहे
0: सदा सदा हर के गुण गाहे
1: राम नाम जो करे विचार
0: चेतन मंतकनि संसार
1: मन तन मुख बोले हर मुखी
0: सदा सदा जानो ते सुखी
1: एको एक एक पछानै
0: ते तुत कियो सोजी जानै
1: नाम संग जिस का मन मानिया
0: नानक तने निरंजन जानिया
1: गुर प्रसाद अपने आप सुजै
0: जिसकी जानो तृष्णा बुझै
1: साथ संग हर हर जस कहत
0: सर्व रोग त्यो हर जन रहत
1: आन दिन कीर्तन केवल बखियान
0: मैं सोई निर्वाण
1: एक ऊपर जिस जन की आशा
0: उसकी कटिए जम की फसा
1: पार ब्रह्म की जिस मन भूख
0: नानक प्रसन्न लागे दुख
1: जिसको हर ब्रह्म मन चिते आवे
0: सो संत सोहेला नहीं दिलावे
1: जिस प्रभ अपना कृपा करे
0: सो सेव को किसते डरे
1: जैसा सात ऐसा दृष्ट आया
0: अपने कार्य में आप समाया
1: सोधत सोधत सोधत सीजया
0: प्रसाद तत् सब पूजे
1: जब देखो तब सब शमूल
0: नानक सो सूक्ष्म सोई स्थूल
1: मैं किस जन मैं नह किस मरे
0: अपने चलते आप ही करे
1: आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट
0: आज्ञाकारी तारी सब सृष्टि
1: आपे आप सगल में आप
0: अनक युग त्रच था प्यो था
1: अविनाशी ना ही किस खंड
0: धारण धार रहे ब्रह्मांड
1: लख पे पुरख प्रताप
0: आप जपाए तन नानक जाप
1: जिन प्रभ जाता सो सो बावंत
0: सगल संसार उदर तन मंत
1: प्रभ के सेवक सगल उदारण
0: प्रभ के सेवक दुख विसारण
1: आपे मेल लय कृपाल
0: गुर का शब्द जप भय निहाल
1: उनकी सेवा सो ही लागे
0: जिसनो कृपा करे बट भागे
1: नाम जपत पावे विश्राम
0: नानक तन पुरख को उत्तम कर मान
1: जो किस करे सो प्रभ के रंग
0: सदा सदा बसै हर संग
1: भाई हो वैसो होए
0: करने हार पछाने सोए
1: आपका किया जन मीठ लगाना
0: जैसा सात ऐसा दृष्टाना
1: जिसकी उपजे तिस माहे समाए
0: सुख निदान उन्होंने

0: राष्ट्रपति
1: अपना सिपा मन में राख
0: मानो की तू प्रीत त्याग
1: तेसे परे ना ही किश होए
0: सर्व निरंतर एको सोए
1: आपे बिना आपे दाना
0: गैर गंभीर गहीर सुजाना
1: पार ब्रह्म परमेश्वर को बिंद
0: कृपा ध्यान दयाल बख्शंद
1: साथ फिर की चरनी पाओ
0: नान कै मन हे नराव
1: मनसा पूर्ण सरना जोग
0: कर पाया सोई हो
1: हरन भरम जाता नेत्र फोर
0: मंत्र न जाने होर
1: अंत रूप मंगल सद जाके
0: सर्व थोक सुनिए करता कै
1: राज महराज जोग मह जोगी
0: अपमत पीसर कृष्ण मैं भोगी
1: त्याय त्याय भक्ता सुख पाया
0: नानक दस पुरख का कने अंत न पाया
1: जाकी लीला कीमत नाहे
0: सगल देव हारे अवगाहे
1: पिता का जन्म के जाने पूत
0: सगल परोही अपने सूत
1: सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे
0: जनदास नाम ते आवे से
1: देह गुण में जाको परमाए
0: जन्म रेफर आवे जाए
1: पूज नीच तिसके स्थान
0: जैसा जनावे तैसा नानक जान
1: नाना रूप नाना जाके रंग
0: नाना पेख करे एक रंग
1: नाना विद किनो विस्तार
0: रबे बनासी एक अंकार
1: नाना चलित करे थिन माहे
0: पूर रहे पूर्ण सब ठाए
1: नाना विद कर बंत बनाई
0: अपनी कीमत आपे पाई
1: सब कर तिसके सब तिसके ठाव
0: जब जब जीवे नानक हर नाम
1: नाम के तारे सगले जंत
0: नाम के तारे खंड ब्रह्मंड
1: नाम के तारे सिमरत वेद पुराण
0: नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान
1: नाम के तारे आकाश पाताल
0: नाम के तारे सगले आकार
1: नाम के तारे पुरिया सब भवन
0: नाम के संग उतरे सुन श्रवण
1: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
0: नानक चौथे पद में सो जनगत पाए
1: रूप सत जाका सत स्थान
0: सत के बल प्रधान
1: करतूत सत सत जाकी वाणी
0: सत पुरुष सब माहे समानी
1: सत कर्म जाकी रचना सत
0: मूल सत सत उत्पत
1: सत करणी निर्मल निर्मली
0: जिसे बुझाए तिसे सब भली
1: सत नाम प्रभु का सुखदाई
0: विश्वास सत नानक गुर ते पाई
1: सत वचन साधु उपदेश
0: सत ते जन जाके हृदय प्रवेश
1: सत नित बुझे जे कोई
0: नाम जबरता की गत होए
1: आप सत की असर सत
0: आपे जाने अपने मित गत
1: जिसकी सृष्ट सो करण है हार
0: अवर न बूझ करत विचार
1: करते की मित न जाने किया
0: नानक ज्योत सुभाव है सो वर्तिया
1: बिस्मन बिस्म भय बिस्माद
0: जिन बुझिया तिस आया स्वाद
1: करके रंग रात जन रहे
0: गुर के वचन पदार्थ लहे
1: होए दाते दुख काटन हार
0: जाके संग तरह संसार
1: जन का सेव सो वट भागी
0: जन के संग एक लिव लागी
1: गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे
0: गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक
1: आद सच जुगाद सच
0: पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी
1: चरण सत सत प्रसन्न हार
0: पूजा सत सत सेवदार
1: दर्शन सत सत पेकनहार
0: नाम सत सत ध्यान हार
1: आप सत सत सतधारी
0: आपे गुणकारी
1: शब्द सत सत प्रभक्ता
0: सुरत सत सत जस सुनता
1: भुजन हार को सत सब होए
0: नानक सत सत प्रभ सोए
1: सत स्वरूप हृदय जन मानिया
0: नानक रावण तिन मूल पछाने
1: जाकर हृदय विश्वास प्रभाया
0: सत ज्ञान तिस मन प्रगटाया
1: भय ते निरपो होए बसाना
0: जिस ते उपजा तिस माहे समाना
1: बस माही ले बस कटाई
0: ताको भिन्न न कहना जाई
1: बूझे बूझ नहार विवेक
0: नारायण मिले नानक एक
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
0: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत
0: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
1: ठाकुर को सेवक जाने संग
0: रब का सेवक नाम कै रंग
1: सेवक को प्रपालन हारा
0: सेवक की रख है निरंकारा
1: सो सेवक जिस दया प्रभु धारै
0: नानक सो सेवक सास सास समार
1: अपने जान का पर्दा ढाकै
0: अपने सेवक की सर पर रख है
1: अपने दास को देव डाई
0: अपने सेवक को नाम जपाई
1: अपने सेव की आप पत रख है
0: ताकि कदमित कोई न लख है
1: रब के सेव को न पहुँचे
0: रब के सेव के ऊंचते ऊंचे
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया
0: नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया
1: नीकी कीरी मह कर रख है
0: भस्म कर एलस कर कोट लाख
1: जिसका शासन काटते आप
0: ताको राखत दे कर हाथ
1: मानस जतन करत बहु भांत
0: जिसके कर्तव वृथे जात
1: मारे न रख है अब न कोई
0: सर्व जिया का रखा सोए
1: काहे सोच कर हेरे प्राणी
0: जब नानक प्रभ लख बडानी
1: बार बार बार प्रभ जपी है
0: मते मन तन तरपी है
1: नाम रतन जन गुरमुख पाया
0: जिसके शेवर न ही दृष्टाया
1: नाम धन नामो रूप रंग
0: नामो सुखर नाम का संग
1: नाम रस जो जन तृप्ताने
0: मंत्र नाम में नाम समाने
1: ऊर्त बैठ सोभत नाम
0: रहो नानक जन कै सद काम
1: बोलो जस देवा दिन रात
0: रब अपने जन की नींदात
1: रहे भक्त आत्म कह चाये
0: रब अपने से रहे समाये
1: जो हो वाह हो वत सो जाने
0: रब अपने का हुक्म पछाने
1: इसकी महिमा कौन बखानो
0: इसका गुण क्या एक न जानो
1: आठ पैर प्रभ से हजूरे
0: रहो नानक से जन पूरे
1: मन मेरे तिन की ओट ले
0: मंत्र ने अपना तिन जन दे
1: जिन जने अपना प्रभु पछाता
0: सोजन सर्व थोक का दाता
1: किसकी शरण सर्व सुख पावे
0: इसके दर्श सब पाप मिटावे
1: अवर सियानक सगली छाट
0: जिस जन की तू सेवा लाग
1: आप न जान न हो भी तेरा
0: नानक तिस जन के पूजो सद पैरा
1: श्लोक सत पुरुख जिन जानिया सत गुर तिस का नाम
0: जिसके संग सिख उदर है नानक हर गुण गा अष्टपदी
1: सतगुर से की करे प्रतपाल
0: सेवक गुर सदा दयाल
1: सिख की गुर दुर्मत मल हिर है
0: गुर बचनी हर नाम उचर है
1: सतगुर सिख के बंधन काट है
0: गुर का सिख वकार के हट है
1: सतगुर सिख को नाम धन दे
0: गुर का सिख वट भागी है
1: सतगुर सिख का हलत पलत सवार है
0: ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੇ
1: ਗੁਰ ਕੈ ਗਰੀਬ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੇ
0: ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹੈ
1: ਆਪ ਸਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੇ
0: ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੇ
1: ਮਨ ਬੀਤਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ
0: ਸੇਵਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ
1: ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੀ
0: ਜਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵਾਮੀ
1: ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਲੇ
1: ਜਿਸ ਵਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਨ
0: ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ
1: ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰਨਾਉ
0: ਅਨਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਓ
1: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ
0: ਆਠ ਪਹਿਰ ਪਾਰ

0: का नाम ले
1: सच उपदेशे वको दे
0: वो माया के संग न लेप
1: मन में रखे हर हर एक
0: अंधकार दीपक प्रगासे
1: नानक परम बहुत दुख ते नासे
0: संत माही ठांड बरताई
1: अनंत भया दुख नाठे भाई
0: जन्म मरण के मिटे अंदेसे
1: साधु के पूर्ण उपदेशे
0: हो चुका निरपो होए बसे
1: सगल व्याध मन ते कह नसे
0: जिसका साधन कृपा धारी
1: सा संग जप नाम मुरारी
0: चित पाई चूके भ्रम गमन
1: सुन नानक हर हर दस सरवण
0: निर्गुण आप सरगुण भी होही
1: कला धार जिन सगली मोही
0: अपने चरित प्रभ आप नाए
1: अपनी कीमत आपे पाए
0: हर बिन दूजा नाही कोए
1: सर्व निरंतर एको सोए
0: ओत पोत रव्या रूप रंग
1: भय प्रकाश साधक संग
0: राज रचना अपनी कल धारी
1: अनक बार नानक बलहारी
0: श्लोक साथ न चले बिन भजन दिखिया सगली शार
1: हर हर नाम कमावन नानक हो तन सार अष्टपदी
0: संत जना मिल करो विचार
1: एक सिमर नाम आधार
0: अवरो पाप समीत पसारो
1: चरण कमल विद मैं उरतार
0: कर्म काम सो प्राप्त समर्थ
1: दृढ़ कर गहो नाम हर वत
0: एहो तन संचो हो भगवंत
1: संत जना का निर्मल मंत
0: एक आस रखो मन माहि
1: सर्व रोग नानक मिट जाहि
0: जिस तन को चार पुंट उठता वही
1: सो तन हर से बाते पावे
0: जिस सुख को नित बांचे मीत
1: सो सुख साधु संग प्रीत
0: जिस शोभा को करहे भली करनी
1: सा शोभा पर हर की सरनी
0: अन को पावी रोग न जाये
1: रोग मिटे हर अवखद लाये
0: सर्व निधान हर नाम निधान
1: जप नानक दरगह प्रवान
0: मन प्रबोधो हर कह नाई
1: स्थापते बैठाए
0: ताको बिघन न लागे कोई
1: जाके हृदय बसे हर सोए
0: कल ताती ठंडा हर नाओ
1: सिमर सिमर सदा सुख पाओ
0: हो बिन सह पूर्ण होए आस
1: भगत पाए आत्म प्रकाश
0: हित कर जाए बसे अविनाशी
1: नानक काटी जम फासी
0: सत विचार कहे जन साचा
1: जन्म रसो काचो काचा
0: आवागमन मिटे प्रभ सेव
1: आप त्याग शरण गुरुदेव
0: क्यों रत्न जन्म का होए उधार
1: हर सिमर पुराने आधार
0: अनको पाप न छूटन हारे
1: सिमरत शास्त्र वेद विचारे
0: हरती भगत करो मन लाए
1: मन वंशित नानक फल पाए
0: संग न चार स्थिर रह तना
1: जल पटावे मूर्ख मना
0: सुत मीत कुटुंब हर बनेता
1: इनते कहो तुम कवन सनाथा
0: राज रंग माया विस्तार
1: इनते कहो कवन छुटकार
0: हस हस्ती रथ सवारी
1: झूठा डंप झूठ पसारी
0: जिन दिए तिस बुझे न बगाना
1: नाम पसार नानक पछताना
0: गोटी मातू लेह एने
1: भक्त बिना बो डूबे सियाने
0: हरती भगत करो मन मीत
1: निर्मल होए तुम्हारो चीत
0: चरण कमल रखो मन माहे
1: जन्म जन्म के किल बिख जाहे
0: आप जपो अवरा नाम जपाव हो
1: संत कहत रहत गत पाव हो
0: सार भूत सत हर को नाओ
1: सह सबय नानक गुण गाओ
0: गुण गावत तेरी उतर समैल
1: दर्श जाय हो मैं बिख फैल
0: ओहे अचिंत बसै सुखनाल
1: साध ग्रासर नाम समाल
0: छाड़ सियान सगली मना
1: साध संग पावे सस्तना
0: हर पूंजी संच करो व्यवहार
1: यहां सुख दर गय जयकार
0: सर्व निरंतर एको देख
1: कहो नानक जाके मस्तक लेख
0: एको जप एको सलाहे
1: एक समर एको मन आहे
0: एक सके गुण गाओ अनंत
1: मंतन जाप एक भगवंत
0: एको एक एक हर आप
1: पूर्ण पूरे प्रव्याप
0: अंत विस्तार एक ते भये
1: एक आराध प्राप्त गए
0: मंतन अंतर एक प्रभ राता
1: गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक
0: फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरनाई
1: नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अष्टपदी
0: जाचक जन जाचे प्रभ दान
1: कृपा देव हर नाम
0: साध जना की मांगो धूर
1: पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर
0: सदा सदा प्रभ के गुण गावो
1: सास सास प्रभ में ते आवो
0: चरण कमल से लागे प्रीत
1: करो प्रभु की नित नीत
0: एक कोट एक को आधार
1: नानक मांगे नाम प्रभु सार
0: प्रभु की दृष्ट महा सुख होए
1: रस पावे बिरला कोए
0: जिन चाख्या से जान तृप्ता ने
1: पूर्ण पुरख नहीं डोलाने
0: सुपर भरे प्रेम रस रंग
1: जय चाओ साधक संग
0: हरि शरण आन सत्याग
1: अंतर प्रकाश अंधन लिवलाग
0: बट भागी जपया प्रभु सोए
1: नानक नावर ते सुख होए
0: सेवक की मनसा पूरी भई
1: सतगुरु ते निर्मल मत लई
0: जान को प्रभु होए दयाल
1: सेवक की नो सदा निहाल
0: बंधन काट मुक्त जन भया
1: जन्म मरण दुख भ्रम गया
0: पुन्नी श्रद्धा सा पूरी
1: गव रहा सत्संग हजूरी
0: जिसका सा तिन लिया मिलाए
1: नानक भक्ति नाम समाये
0: सो क्यों बिसरे जे काल न पाने
1: सो क्यों बिसरे जे किया जाने
0: सो क्यों बिसरे जे सब कुछ दिया
1: सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया
0: सो क्यों बिसरे जे अगन मह रख है
1: गुर प्रसाद को बिरला लख है
0: सो क्यों बिसरे जे बिख ते काट है
1: जनो जनम का टूटा गंड है
0: गुर पूरा तत ए है बुझाया
1: प्रभ अपना नानक जन ध्याया
0: साजन संत करो ए काम
1: आन त्याग जपो हर नाम
0: सिमर सिमर सिमर सुख पावो
1: आप जपो अबरे नाम जपावो
0: भाई तरी है संसार
1: भगती तन होशी सार
0: सर्व कल्याण सुपनिध नाम
1: मूर्त जात पाए विश्राम
0: सगल दुख का होवत नास
1: नानक नाम जपो गुणतास
0: उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ
1: मंत्र अंतर ही स्वाव
0: नेत्रों देख दर सुख होए
1: मन बिकसै साध चरण धोए
0: भक्त जना कै मन तन रंग
1: अल्लाह को पावे संग
0: एक बस दीजे करमया
1: प्रसाद नाम जप लिया
0: ताकि उपमा कही न जाए
1: नानक रहया सर्व समाये
0: रब बख्शांत दीन दयाल
1: भगत बशल सदा कृपाल
0: नाथ नाथ गोविंद गोपाल
1: सर्व ਘਟਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ
0: ਹਾਥ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ
1: ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ
0: ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋਹੀ ਪੁਨੀਤ
1: ਪਾਏ ਲਾਵੇ ਮਨਹੀਤ
0: ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ।

0: पूरे गुर का सुन उपदेश
1: ब्रह्म नित कर पेख
0: सा सा सिमर हो गोबिंद
1: मन तरकी उतर चिंद
0: आस अनित त्याग हो त्रंग
1: संत जना के तुहर मन मंग
0: आप छोड़ बेनती करो
1: साथ संग अग्न सागर तरह
0: हर धन के भर ले हो भंडार
1: नानक गुरपुरे नमस्कार
0: खेम कुशल सहज आनंद
1: साथ संग पर परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो
1: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
0: चित चितव हो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का यह आधार
0: उत्तम श्लोक साध के वचन
1: अमलीक लाल यह रतन
0: सुनत कमाप्त हो उदहार
1: आप त्रैलोक निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहत बाजे
1: सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजे
0: प्रगटे गोपाल महांत कह माथे
1: नानक उदरे तिनके साथे
0: शरण जोग सुन सरनी आए
1: कर कृपा प्रभ आप मलाए
0: मिट गए बैर भय सब रीन
1: अमृत नाम साध संग लैन
0: सो प्रसन्न भय गुरुदेव
1: पूर्ण होई सेवक की सेव
0: आज जंजाल विकास से रहते
1: राम नाम सुन रसना कहते
0: कर प्रसाद दया प्रभ धारी
1: नानक नवहि खेप हमारी
0: प्राप्ति उस्त करो संत मीत
1: सावधान एकाग्र चीत
0: सुख मनि सहज गोबिंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सहोत निधान
0: सब इच्छा तां की पूर्ण होए
1: प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
0: सब से ऊत पाए स्थान
1: और न होवे आवन जान
0: हर तन खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: खेम शांत रिध नव निध
1: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
0: विद्या तप जोग प्रभ ध्यान
1: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रकाश
1: सबके मत सगल ते उदास
0: सुंदर चतुर तत् का बेता
1: समदर्शी एक दृष्टिता
0: ये पल तिस जन कै मुख भने
1: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
0: केहो निधान जपै मन कोई
1: सब जुग मैं ता की गत होए
0: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
1: समृत शास्त्र वेद बखानी
0: सकल मतांत केवल हर नाम
1: गोबिंद भगत कै मन विश्राम
0: कोट अपराध साध संग मिटै
1: संत कृपा ते जमते छुटे
0: जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए
1: साध शरण नानक ते आए
0: जिस मन बसै सुने लाए प्रीत
1: जिस जन आवे हर प्रभ चीत
0: जन्म मरणता का दुख निवारै
1: दुर्लभ दे तत्काल उधार
0: निर्मल शोभा अमृतता की बानी
1: एक नाम मन माहे समानी
0: दुख रोग बिन से भय भरम
1: साध नाम निर्मलता के कर्म
0: सबते ऊचता की शोभा बनी
1: नानक एह गुण नाम सुखमनी
0: सबते ऊचता की शोभा बनी
1: नानक एह गुण नाम सुखमनी
0: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
2: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

पौड़े बिन सतगुरु कि ना पायो, बिन सतगुरु कि ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है जिन विच हो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेब की दिशन तो खी जिन्हें सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सोके तो धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

दीपा लोहा मंडला खंडा बिरपंडहा अंडू जेरी जुट पजा खानी सेक जा सोमत जाने नानका सारा मेरा जनता नाग जंतु पाए कैसा माले सबनहा जिन करते करना किया चिंता भी करनी ता सो करता चिंता।

पौड़ी सच्चा साहेब एक तुझ ने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिल गए सच पाया, जिनके हृदय सच बसाया, मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया, विच दुनिया का है आया, विच दुनिया

0: महला पहला पर गड्डी लदिए पर परिये साथ पर बेड़ी पाइए पर गड्डिए खास परिये है जेते वर्ष वर्ष परिये जेते मास परिये जेती आर जा परिये जेते सास नानक लेखे की गल और हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया तेता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या।

0: काल पूर वर्त्या कल काल बेताल बियो बीज बतले गए अब क्यों कबेदार जे को रुचि हुरत होए नान पाहे बारा कोरे रंग ना सोए फैबिच खुम चढ़ाइए सनु पतन होए नान भक्ति जे रपे पूरे सोए दा कोए
1: मोहल्ला पहला लब पाप धोए राजा मेहता कूड़ हुआ शिकदार काम ने इज्जत पुछिए बह बह करे विचार अंधी रजित ज्ञान होनी पाहे प्रेमरदार ज्ञानी ने चेवा देवा विरूप करे सिंगार उच्चे खुके वगा जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजर संजय करे प्यार तरमी तर्म करेगा वा वह मंगे मुख द्वार जति सदा वह जुगत न जाने है छड बह है करबार सबको पूरा आपे होवे कठन कोई आखे पत प्रवण पिछे पाइये ता नानक तोलिया जापे
0: पहला ज्ञान का सच्चा वेखे सोए सबनी चारा मारिया करता करे सोए अगे जात न जोर है।

0: कुंभे बदा जल रहे जल बिल्कुल ना होए ज्ञान का बदा मन रहे
1: और बिन ज्ञान न होए पड़ी पड़े हो रखा साधन मारिए।

0: धुआ पूरा तपे का सतगिर धुआ हो कलजुगरा थगन का पूरा गैर धुआ हो
1: पहला शाम कहे सितंबर समी सच

0: नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पुठानी मलकिया
1: चारे वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाव पग्द करनी।

सतगुरु बठों वारिया जित मेरे खसम संभालिया जिनका उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत ने हालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोहिता विरले।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आखे पाए हुए प्राणा सटिए फिर पाया होर नानक तग न टुटे जे तग होवे जो।
1: महला पहला नाई मनिए पत उपजे साला ही ससूत डर गए अंदर पाइये तग न टूट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पड़े निदारी तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न की। वे तग आया पे बते बड़ता।

नानक कूड़ रहया पर भो मथे टिका तेड़ धोती का खाई हाथ छुरी जत कसाई नील वस्त्र पैर होवे प्रभा।

निर्मल सतगुर ते करनी कमानी कूड की सोए पहुंचे नाही मनसा सत सुमानी जन्म रतन जन खटे आप भले से वन जारे कहे नानक जिन मन निर्मल है सदा रहे गुरु नाले जे को से गुरु से ती सन्मुख।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: हां जी तुसी भी सब तो वधिया सेल फोन डील दी पाल कर रहे हो ता पहुंचो वायरलेस कंट्री तुहाडे ऑथराइज्ड रॉजर्स डीलर ते ले जाओ आईफोन एयर या सैमसंग S26 $0 नाल ऑन सिलेक्ट प्लान्स चाहे तुसी अपना फोन अपग्रेड करन बारे सोच रहे हो जा रॉजर्स ते स्विच करन बारे सोच रहे हो ए सही मौका है बचत करन दा इस शनिवार 1 तो 5 बजे तक 1550 रेडियो होवेगा लाइव ऑन लोकेशन वायरलेस कंट्री दी 27130 फ्रेजर हाईवे ऑल्टो ग्रोव वाली लोकेशन ते कॉल सनी एंड सेव मनी 604-381-1000
2: 2992 Street, 19 June to 24 June लार्ज साइज चेरीज लवो 2.99 pound 2 pound प्लेन गुड 2.98 ताजा अदरक 98 cents नू पाउंड अते बीसी हॉट हाउस टोमेटोज 98 cents नू पाउंड
3: The Surrey Crime Prevention Society is looking for new volunteers. Report suspicious activities in your neighborhood with the Citizens Community Safety Watch program or take part in community safety tours by observing local malls, parks, transit hubs, rec centers, and libraries. Help keep our roads safe with the Speed Watch program or adopt a street and help our neighborhoods become anti-graffiti communities. The Surrey Crime Prevention Society also needs volunteers for the office, special events, youth mentors, and students. PreventCrime.ca, an initiative of Pulse FM Cares.

0: हाँ जी, तुसी भी सब तो वधिया सेलफोन डील दी पाल कर रहे हो ता पहुंचो वायरलेस कंट्री तुहाडे ऑथराइज्ड रॉजर्स डीलर ते ले जाओ आईफोन एयर या सैमसंग S26 $0 नाल ऑन सिलेक्ट प्लान्स। चाहे तुसी अपना फोन अपग्रेड करने बारे सोच रहे हो या रॉजर्स ते स्विच करने बारे सोच रहे हो, ए सही मौका है बचत करण दा। इस शनिवार 1 to 5 बजे तक 1550 रेडियो होवेगा लाइव ऑन लोकेशन वायरलेस कंट्री दी 27130 फ्रेजर हाईवे ऑल्टो ग्रोव वाली लोकेशन ते। कॉल सनी एंड सेव मनी 604-381-1008 वायरलेस कंट्री।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण @604-581-1900।

0: सनी जुड़ी सारा स्टाफ लग्या होया है, गलबात कर रहे ने, आ रहे ने, लोग फोन भी कर रहे ने, तुसी फोन करके डीलां बारे सारा पता करना ना। ते नाल ही तुहानू दस्या है बाई बाई डील बारे। बाई बाई डील इहदी सब तो फेमस डील है और समर दे विच इहनां ने जिहड़ा ब्लैक फ्राइडे डील लाती है। और सब तो बड़ी गल है वी वर्ल्ड वाइड घूमो कितें रोमिंग कोई नहीं है, ये बहुत खास नवे ते पुराने दोनों ही कस्टमर वास्ते इहनां दे कोले बहुत ही वधिया डीलां ने। होर समा हो चुका है छोटी जी ब्रेक दा, ब्रेक लवांगे, दो प्यारे प्यारे गाने सुनांगे, उस तो बाद मैं ते पुनीत जी तुहाडे नाल फिर जुड़ांगे। 5 बजे तक अज्ज असीं इत्थे हां, जे कोई दोस्त मित्र मिलना चाहुंदा है ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕੰਟਰੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਲਾਇਓ ਫੋਨ ਆ ਜਾਓ ਕਿਰਾਂ।
1: 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Baad and Sardarni Surinder Kaur Baad. 1550 radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo 604-900-6790.